0: काबिल
1: मैं विस्मय गई नु मैं आग जाई नहीं सका मैं बहुत पानी प्यास लगता
0: एक जी रुको मैं पानी लेके आई ना

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: यति बेला दिउँसोको